याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्यनी मोक्षां पन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා ආමෙන්

0: हला हे तिलियाली हम आला तिले मेले ई खाती हाले हम आला तिलियाले खाती आला हे के तिलिया मेला बा तिले सिलो असो ते बाना खाना रवा लीबा हे मेले ले थे बा खातिला ते सोए नवतल देन असो ते बाना येशु स्वांस के नाम में फले आओ
1: देखे मामा खातिला रे तेरे बे
0: ई हमाला के तियाले हमा के रे
1: बे दे दे रवा तिला Hallelujah.
0: Ketelia mala mati hana hele ketelia mele matilia le. Obra sudiveva swamin bhats. Obhats udau karanne kine kenata.